तेरा आसन अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है। लुक ये मेरा आसन अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है। अरे शादी

अरे ताजमहल बनवाना सा जहाँ की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तुम्हें गुस्से में फोन मेरा काटा तो सिक्स सरेंडर हुआ।

0: 的发。耶耶耶耶。
1: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।
2: शेख ये बात ही ग्यार।

तू करे ग्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटों पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। Baby let's go right now, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।